मुकद प्रियता के पारावर आप कराए साक्ति फिर आप कराए मार एक ना गली जंजीरें एक चुरी चढ़े विशियार आप कराए करे आपो कैसू करी पुकार नान करना जिनकी आ फिर तिस

एक ओंकार सत नाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक्कर चिहन अर बरन जात अर पात नहन जेहे रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत केहे अचल मूरत अनपो प्रकाश अमितोज कहिज कोट इंद्र इंद्राण साहे साहन गणिज तेर पवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिण कहत तो सर्व नाम कथय कवन कर्म नाम वर्णत सुमत अब राखो दास पाठ की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हर नाख शफारे कर आज फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी शीनत बस्तर दीन बहुसाज सो दम आपदा ते राखे गान का पढ़त पूरे तेह काज श्री सतगुर सो परसन कल युग होए राखो हो दास पाठ की लाज हों अपराधी गुनहगार हों बेमुख मंदा चोर जार जुआर हों पर कर जो हंदा निंदक दुष्ट हराम खोर ठग देश ठगंदा काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार करंदा विश्वास काती अकिरत कहन मैं को न रखंदा सिमर मुरीदां ढाडियां सतगुर बखसंदा बाणी गुरु गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कह सेवक जन मन पर तख गुरु निसतारे अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवे परम गत मेरी जलन बुझी शीतल होए मनुआ सतगुर का दर्शन पाए जियो दर्शन प्यासी दिन सरात
चित बहु आनंद ननीत, खोल कपट गुर मेलियन, नानक हर संग मीत। सुख टल गुर सेवी, एहन सुसहज सुभाय, दर्शन परसे गुरु के, जन्म मरण दुख जाय, होवे सिफत ख।

हमरी बेदन तू जानता साह, अवर किया जाने कोय। रहाओ साचा साहिब सच तू मेरे साह, तेरा किया सच सब होए। झूठा किसको आखिए साह, दूजा नाही कोए। सबना विच तू वरतदा साह, सब तुझ है त्यावह दिन रात। सब तुझ ही थाव हो मांग दे मेरे साह, तू सब ना कर है एक दात। सब को तुझ ही विच है मेरे साह, तुझ ते बाहर कोई नाहे। सब जी तेरे तू सब सदा मेरे साह, सब तुझ ही माहे समाहे। सब ना की तू आस है मेरे प्यारे, सब तुझ है त्याव है मेरे साह। ज्यों भावे त्यों रख तू मेरे प्यारे, सच नानक के पातशाह। सबना की तू आस है मेरे प्यारे, सब तुझ है त्याव है मेरे साह। ज्यों भावे त्यों रख तू मेरे प्यारे, सच नानक के पातशाह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तनासरी महला चौथा। मेरे साहा मैं हर दर्शन सुख होए, हमरी बेदन तू जानता साहा, अवर क्या जाने कोई।

0: रंग प्रंग अनेक न जपन करतबा। जी अंदर जियो सब किस जान ला, सब किस तेरे बस तेरा घर पला। तेरे घर नंद वधाई तुद कर, माण महता तेज अपना आप जर।
1: सर्व कला भरपूर दिसै जत कता,

एक अरदास पाट की रत की गुर रामदास राखो शरणाई। बड़ा तेरा दरबार सचा तुद तखत सिरशाह पातशाह नेचल चौर छत। बड़ी बड़ी बड़ा भार तेरा मर्तबा रंग।

0: गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुटी ना। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
1: Thank you.

दरगह मान पावे पत सों जावे आगे दुख न लागे करेक ते आवे ता फल पावे जित सेवे।

0: रंग परंग अनेक न जापन करतबा जिया अंदर जियो सबकी जान ला सब किस तेरे बस तेरा कर पला तेरा कर आनंद वधाई तुद कर मान महता तेज अपना आप जर सर्ब कला भरपूर दिसे जत कता नानक दासंदा तुद आगे बिनवता।
1: ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇਦਾਈ ਦਇਆ ਖਿਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗੀਆਂ।

एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई, हमारी करो हाथ दै रक्षा, पूरन होए चित्त की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमारे दुष्ट सब तुम कावह, आप हाथ दै मोहे बचावह। सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सब करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करियै, सब बैरन को आज संगरियै। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम है शाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दै मुझे उबरिया, मरण काल का त्रास निवरिया। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जू करिया हो रक्षा। राख ली हो मोह राखन हारी, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का की आत्मासा। जमन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जमन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जमन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो। आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद कियो। काट काट के अंतर की जानत।

बहूँ। जेते बदन सृष्ट सब तारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आदि अनिल अनाद असंभ। ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको पीव न पावत बेदा। ताक कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कश भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सरूपा, रंक पयो राव कही भूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उत भुज खान बहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा हुए बैठा, कहूँ सिमट पयो संकर इकैठा। सिगरी सृष्ट दिखाए अचंपव, आदि जुगादि स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुज तव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हुए मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यै है, ताकि काल निकट नह है। रक्षा होय ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो, ताकि ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध करमो सब होई, दुष्ट शाह श्वै सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास ते ताहि उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा,

सवैया पाई गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न माने ओ सिमृत शास्त्र वेद सब बहुभेद कह हम एक न जाने ओ श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं

आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावण आइया शब्द ता गावह हरि केरा मन जिनी वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारणा अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारणा सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साची साहेबा क्या नाही घर तेरै घर ता तेरै सब किश है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहेब क्या नाही घर तेरै साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया कर सांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटहौ जिस दिया एह वडिआइया कह नानक सुनहो संतहो शब्द धरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित कर सभागै कर सभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख होआ तित कर अनहद वाजे आनद सुनह वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे

है मरो तहार कै द्वार, मत हर पूछे कौन है पर हमारे बार। गगन दमामा बाजियो पर।

महाआनंद सदा कर कीर्तन पुरख विधाता पाए अब मोहे राम जसो मन गायो पयो प्रगास सदा सुख मन मह सतगुर पूरा पायो रहाओ गुण।

तम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत शाड बिख बिख खाई, माया मो परम पै फूले, सतदारा स्यों प्रीत लगाई, इक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई, इक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राख शरणाई, इक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राख शरणाई, सुख टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुपाय, दर्शन परसय गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए, होवे सिफत खसम दी, नूर अरसों कुरसों चट्टी है, तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी है, सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शाह दशाह, जिस पास बैठिया सो ही है, सबना दावे साहो, सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शाह दशाहो, जिस पास बैठिया सो

संत जनाम हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो, सर्व सुख हर

आपने आप साजो आपने रचुनाओ दोई कुदरत साजिए करा सन डिठो चाओ दाता करता है आप तू तुझ देवे करे पसाओ तू जानोई सबसे दिल से जिंद कवाओ कर आसन डिठो चाओ कर आसन डिठो चाओ।

0: करता करना मैं ना जा हाँ करी न हो बलिहारी कुदरत वस्या तेरे अंत ना जाई लख्या रहाओ जात मैं जो जोत मैं जाता कल कला भरपूर है तू सच्चा साहिब सुख सवाले हो जिनकी ती सुपार पया कहु नान कर देखिया बातां जो किस करना सो कर रहा महला दूजा
1: जो शब्दं ज्ञान शब्दं बेशब्द ब्राह्मण है खत्री शब्दं सूर शब्दं सूदर शब्द प्राकृत है सर्व शब्दं एक शब्दं जे

0: सतगुरु सतगुरु सतगुरु को बिंद जियो, बले छलन सबल मलन भगत फलन कान कुर, नेक लंक बजे डंक चढ़ू दल अरविंद जियो, राम रवन दुर दवन सकल पवन कुशल करन, सर्ब भूत आप ही देवाद देव सैस मुख फनिंद जियो, जरम करम मछ कछ हो बरा जमना के कोल खेल खिलो जिन गिंद जियो, नाम सार हिये तार तज विकार मन गंद, सतगुरु सतगुरु सतगुरु गोबिंद जियो।
1: कवन जोग कौन ज्ञान ध्यान, कवन बिद उस्तत करिए, सिद्ध साधक

का सदका सर्ब सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रच्छिया रियायत। देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले। बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान बवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म।